दुखी ब्रह्म न कोई एक घर माथी दलित्री अति थिए बालक तीन पुत्र उनका आपू दुई दंपति सलाह।

वज्ररूपधारी पूजा करे निरपति जे करी भक्ति बारी। विनती करे वरुण को सवदात आओस यो पुत्र यज्ञ पशु लायक हो जाओ। दातै न उम्रिदिनु छैन बलि भनेर देखिन्छ शस्त्रहरूमै कुरा सुनेर। यति भनी वरुण घरतिर फर्की आए राजा खुसी भइन्वार नगर नलाए। ल

कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा कस्तो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्ग प्रसाद सेवापति कानून के साथ श्रृंखला शुरू सारा सुदामा की नारी करच दिन भारी विपत्ति ले पति छे जाई विनती कर चिंता पिदरले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली हर मन कन कहूं ज्योति समना देव के ही सौगर मन देव चंगा करके मदन चौधरी का हर्षित मुलाकात करने इच्छा वर्तन में विचार मुझे तंबू जमा कर दी सही तंबू बलि गए प्रयोजित पूछे द्वारिका माँ
1: नारायण
0: जनो बालक ओ जननो बालक ओ जगा

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैंड थप्लो 7 MHz मदी प्रसाद साहब आज हो विक्रम संवत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 30 तारीख श्रावण 14 गते बिहार परेवा तिथि अब स्तुति करौ आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पयारी।

राजा ना उसका इशारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाए नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समा

गिरो यत् कर्मम करोमि तत्तदखिलं शम्भो तताराधनम् करणकरम कृतम वा कायकम कर्म जम्बा शरणनयन जम्बा मानसापराधम् विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षेमस्तु जय जय करुणाधे श्री महादेव शम्भो।

0: वासुदेवाय नमः हरि परमात्मा।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शङ्ख कपाल भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिस्म चान ननिलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिरक्षे बलिदक्षे यज्ञ मथ

दुर्वासा अघि थे कुमार पछि थे जय राम जय बोल्दथे बाटो घाटो बजार डाकी दरबार को मार्गली चल्दथे यस्ता पुण्य महर्षि को नचुके लौ लौ गरौँ दर्शना

रो गए वंशन बाबिले के लग जो माथा माउत्यानी को तो वचन सत्त हुन जानी ले सुख होला ईश्वर को ध्यान गर्न मन दे।